0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करा सील
1: टाइट वेरी टाइट।

0: टीम उन्होंने सार में खाना
1: एक उम्मे बैक अंदर
2: खाए चाहिए अंदर
0: उन्होंने आ
1: एर दर रहा नहीं साहू में मैं चोर ना दो को बोले बैक फोन वाली होने दिए दो
0: साहू में मैं चोर ना दो बोले बैक फोन वाला दान का मैंने बाली भी ऐसे रहा हूँ बोले बैक कांजे दाने रे काम करो दाने दो
1: चल में ती बड़ी बाली भी ऐसे काटी कांजे ने
0: मैं बड़ी अहम मी हूँ गेटी मो
1: फुटबॉल
0: जवाब फिना दिस वाण वागे कीने बाय होती बट थोड़ा तो को दिंगे इंगे नहीं तो एंगी तंगरा पेनी शाओ मीने ने आला
1: इंगे जवाब आना गोतू मी हाई नी एकला
0: वाण वागे कंदो रगला ओके शाओ को लवे के जहाल दे मी शाओ में
1: हुसाम दो हुसाम
2: हुसाम के कौन लवे
0: दे दे